एक्स का एफ एम कौआ वोलेंगा एम तनु कुछ आउंगा प्रोग्राम को सब जैसे का के रादो के कभी आतू का कई से पंगा कोई कई को रादो के नंबरो या उन्हें टेन सेवा पेन नेखा एफ एम अनु तो कोई आउंगा वोलेंगा हंगो से आधा मासे लगे का वो अमन होंसिंग को कुमा ओ का वो अमन हूँ अपल पलेंग को कुमा वो जिके मतलब चोंगा वोलेंगा हंगुए सगुजी से का के रादो के कबे तु का खै से पंगवा कुए खै को रादो के नुमरु या होने टेन सेवा पेन नेखा एफ एम अनु तो कुए आउंगा वाला नो हंगुए सगुजी से का के रादो के कबे तु का खै से पंगवा कुए खै को रादो के नुमरु या होने टेन सेवा पेन नेखा एफ एम अनु तो कुए आउंगा वाला नो हंगुए सगुजी से का के रादो के कबे तु का खै से पंगवा कुसिंग ये मतलब चोंगा बोला अकोन ना ये मासे ये कबा बोले ना को ये मतलब चोंगा बा ता ऐसा कोई चीज की आंख को मिटा के बोले ना कौन ना के कबे तो कई से पंगा हुए सिंग ये मतलब चोंगा बोला को ये का वो कनु से सब कुछ सिंग ये अमन हो सिंग को कुमा वो अमन हो आप लोग पहले ना को कुमा नहीं ये को कुमा वो चल में को सोन रखा ता पंगा बकने बोले से सिया कुछ सिंग ये अमन हो असिंग को कुमा वो जी के मतलब चो आउंगा बोला हमको इस आगे मैं कुम्भ संगम बने हैं आते जगह कोई मतलब चोंग में हमको इस आगे उसी सिगा कौन काया सिद्ध के को सापतो की का तम तो को उन्हों सापतो उन्हों वो सापतो जुमा को इस आगे सिगा कौन का तम तेरे चोंग में वाले उन्हों को इस आगे जुमा वाले कौन देगा मन को सिगा को कुमा वो अमन हुआ पल पल ना को कुमा नहीं रे को कुमा के कंजू या तुम हविंगे जी पंगा बातु तो पल पल के मुंगा मसो तेरे तो उन्हों